0: लाहोरे दाई
1: के हो कांची
0: लाहोरे को फैशन कसूरे
1: आ तस्ता जावा
0: बाबे कस तो गम क्यों को हो
1: लो भनु तो
0: लो लो
1: लो मादले दाई गम काउनु होस्ता

छी है कस्तो रहे छ बिना के न हो गम के को किस्त सुंदा फुरंग भई लहरे ढलके को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हिरसल के को केना भूलचस लहरे दाई लूट।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।